0: Baik warga, akhirnya menu-menu Pesona Mandalika untuk hari ini sudah keluar semua ya. Semoga informasi yang kita hadirkan bisa bermanfaat dan esok masih bisa ketemu kembali di Pesona Mandalika. Baiklah, mohon maaf DJ kalau ada salah-salah kata dari Hana Sari dan mohon maaf kalau ada salah kata ya. Hana pamit dulu. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: चाचा बोलो बोलो प्यार है, मऊ चांदी आला करिश्मा कपूर आचा, मऊ गंदा आला शाहरुख़ान आचा आचा.
1: और हिंदी कविता
2: डंगर है
3: सोना सोना
2: मंडलिका.